0: Iya, Ran saling silur Ronin mana Ulia ya. Tapi Priti sama Abisa kan enggak jodoh di film ini. Yang berjodoh itu Rani sama Syahrukh ya. Baiklah warga, sampai di sini Hana bersama Anda ditutup Kabi Alvidana Kena. Insya Allah esok kembali berjumpa dan bersua. Mudah-mudahan kita sehat semua ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Muji maaf Kardiji kalau udah salah kata dari Hana Sari. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? Oh my god, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
2: अच्छा अच्छा बोलो बोलो प्यार है. मौ चांदी आला करिश्मा कपूर अच्छा. मौ गंदा आला शाहरुख खान अच्छा अच्छा.
1: और हिंदी कविता
2: डगर है
3: बस सुनो
4: सुनो
2: मन मन रिलैक्स.

0: आने ही मानो।
1: ठीक है, तो मैं सारी रात यही रहूंगा। लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
0: Get lost.
1: पक्का नहीं मान रहा?
0: हाँ नहीं मानो, जो करना कर ले, घड़ी घड़ी ड्रामा करती है
1: राजा। ठीक है, तो तब आना जब मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी मैं।